0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तुहाडे बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। अज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नू कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान।

डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते मैं डोगरन सोल नेहा शर्मा ते आज सैर करा दे है बागे बहू दी। ये जम्मू शहर दा बड़ा गे अच्छा बड़ा गे सुंदर मनोरम दृश्य आला भाग है जो कि तवी नदी दे कंडे बसेदा है। ते इत्थे बड़े गे शैल शैल बूटे न, हर तरह दे बड़े गे प्रकार दे फुल न जो अखें गी बड़ा सुकून दिंदे न। कन्ने गे कन्ने पहाड़ियों दे बिच इक इत्थे लेक भी है। ते कुल मिलाइए जिहड़ा दृश्य है वह तो बड़ा गे अलौकिक दृश्य है। इत्थे तुस आखी सकदे हो तीन चीजें दा बड़ा गे सुंदर संगम है, धरती जल ते हरियाली। इन्हें तीनों दा जो प्रकृति ने इत्थे मेल पाया दा ओह दा के आखने, बड़ा गे शैल बड़ा गे सुंदर नज़ारा है। ये जिहड़ा बाग है ये एक किले दे अंदर बाहू किले दे अंदर बने दा है। ते जियां कि मैं तुसीं दस्सिया कि बहुत गे इहदी जो नज़ारे न, इहदी बाग दी जो संरचना है वह प्रकृति ने बड़े गे अनोखे तरीके दी बनाई दी है। ते मन ते आत्मा दोनों प्रसन्न हो ही जांदे ने। इत्थे इत्थे बहुत अच्छी अच्छी तरह के एक फवारे लगे देन ते पौड़ी नुमा जिहड़ी इहदी संरचना की गई है वह इस दे नज़ारे ही चार चन्न लांदे ने। प्रकृति का ओत प्रोत इत्थे दा माहौल मने गी मुग्ध करी ओड़दा है। ते जदों अस घूमने जन्ने आ उत्थे ते उहदे बाद घर आने दा बिल्कुल भी मन नहीं करदा है। ते राती दा इस बाग दा नज़ारा उहदा ते के आखना, जदों अलग अलग तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स पाउंदे ने फवारे पर ते अगे पिछे दे फुल्लें दे उपर जिहड़ी लाइटिंग हुंदी है ते बस दिल करदा अज इत्थे गै रही अज। इहदी खूबसूरती कन्ने आने वाले जिन्ने भी टूरिस्ट न, जिन्ने भी यात्रु न या फिर लोकल जम्मू दे लोग न, वो बड़े गै आकर्षित हो ही जांदे ने।

0: दोस्तों नमस्कार, आदाब, उर्दू आज प्रोग्राम हेतु बेई एक फिर हाजिर तुहस खदमत मज उम्मीद तुह आसनो सन प्रोग्राम जरूर पसंद आम मे मीनल पीर
1: सामिन मान तरफ त्यम माय बोरत नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते हेलो
0: मिनल जी आज करो इस गोड थिएटरस मतलब कथ
1: बिल्कुल रमेश जी
0: वनान छे कशीर मंज लुक थिएटर यम करान ओस तिमन ओस वनान बांड यम कम से कम शीतन गामन मंज बसान ओस मगर नचुन त गिंदुन ओस सिर्फ पंधनी गामन मंज करान
1: दपान महाराजा रणबीर सिंह सिंध ब्रोह ओस न थिएटर करने ची या गिनने ची का खास मुहिम रणबीर सिंघन ओस उत्तर प्रदेश पेठ एक लटे रास करण वेल अनियमित यमो पन्ने कलाई हुन प्रदर्शन कशीर त जेम कोर अम कोई असर छस वनस ताम दमाल हिंदस नचनस मंस त बांडन हिंस कलाकारी मंस उछान अम ये शायद यमन रास कर दिवनान
0: मिनल जी पत वही में सदी मंस येले स्कूल कॉलेज खुले तो यमन इदारन मंस त हेचन ड्रामाहन हंस एक्टिविटी शुरू गसी दोमी तरफ ओस सरसी मुल्कस मंस पारसी थिएटर चलन शुरू गोमत तो कशीर मंस त ओस के नौजवान कलाकार यमो यम ड्रामा नेबर वुचमित ओस तो ओस आज सत बड़ मुतमईन
1: तपन रमेश जी महाराजा हरि सिंह ने वक्त आओ गोडन्यूक एमेचर ड्रामेटिक क्लब बनावने यत्मस कलाकार पारसी थिएटर शैली मंस ओस ड्रामा करान मगर कशुर ड्रामा हस म्यूल तो तामते तवज्जो येले अख फनकार श्री नंदलाल नानाहन लोक सत्यच कहावत या राजा हरिश्चंद्र युस्तमो पत स्टेजस पेटते पेश कर
0: मिनल जी तो है सतस अम्युक प्रदर्शन सब्दियो बाने महल एकिस लक्टिस थिएटरस में तो अमे अलाव आव ये साहिबानन तल बेन जान ते गिंदर ये गो वारिया पॉपुलर तो सक्सेसफुल थे तो लोको कोर आत बड़ तारीफ ऐसो ड्रामा या थिएटरस मतलब कट बात जारी मगर गोड़ बोझ दू पन सामीन अख खूबसूरत बात
1: बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ पहले बोझ

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। Summit Realty Expert।
1: इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: मैं कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने।
3: वाह यार नंबर तो दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी।

0: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
1: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोले स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट

0: लाइन ओपन कर लगे मैं तो नाल तुसी स्टूडियो कॉल कर रहे हो एमिरेट दी सेकंड फ्लाइट इतने पहुंच चुकी है कि रेल गड्डी मंगू लोग चढ़ी जाते उतरी जाते हैं संसार है चली जा रहा है तुसी किवें हो बई तो एक बार फिर तुसी आ जाओ तो थोड़े ना भी गलबात करिए असी भी अपना समान रेडी कर लिया है बड़ी खूबसूरत जी कहानी है अज के शो शामिल कर सकते हैं आप ते पर उस तो पहला चढ़ती कला सुननी चाहता जी थोड़ी चढ़ती कला कित्थे कित्थे तुसी हैगे हो किहड़े एरिए घूम रहे हो राइट तो आ बहुत सारे लोग मैं दिखने लग गए सड़कों पर हुण मैं डेयरी के उत्ते देख रहा बहुत सारे लोग अपने साउथ एशिया निकल रहे हैं तो तुसी सानू कॉल कर रहे हो 905-673-3337 चढ़ती कला मेहनतकश लोग इस समय कित्थे कित्थे घूम रहे हैं आप गल कर लीए तो देखिए फिर थोड़ू हजी गल सुना आप 905-673-3337 मैं दस्यो कित्थे कित्थे सुनते पे इस वेले किहड़े किहड़े शहर च हैगे हो थोड़ा पता लगे कि आप किनू गल सुना रहे हैं तो जिहड़े गल सुन रहे हैं वो की कर रहे हैं इस समय तो तुसी 905-673-3337 ते कॉल कर रहे हो 905-673-3337 तो फिर आपां नूं जिहड़ा हैगा पता लग जाऊगा कि मित्र प्यारे कित्थे ने चढ़दी कला कहना तुसी चढ़दी कला 905-673-3337 डायल कर लो तो कुछ गल्लां पता करदे आं 7927 मेरे को होल्ड हो चुके एक लाइन तो मीना जी ने भी मैनू जिहड़ा हैगा मैसेज भेजा हैगा कि असीं सुन रहे हैगे आं 905-673-3337 चढ़दी कला हैलो जी 7927 हैलो
1: सर जी चढ़दी कला जी
0: चढ़दी कला भाई जी कित्थे सुन रहे हो किहड़े शहर चो
1: हैमिल्टन सुन रहे हैं जी
0: हैमिल्टन के मिल्टन
1: हैमिल्टन
0: हैमिल्टन रहने हो इत्थे कि कम आए हो
1: नहीं नहीं कम दे आए हैं रहने हैं ब्रैम्पटन सर
0: अच्छा ब्रैम्पटन दे खुलिया अज की कर रहे हो तुसी
1: डिलीवरी है सर अपना छे दिन कम बीकदा
0: अच्छा लॉन्ग वीकेंड दे छुट्टी नहीं हुंदी है
1: नहीं नो सर कोई छुट्टी नहीं
0: कोई छुट्टी नहीं नाम की है तुहाडा
1: अमरीक सिंह जी
0: अमरीक सिंह जी अमरीक सिंह जी ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ
1: ਮੇਰੀ 14 April 1979
0: ਓਕੇ 14 April 14 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ 14 April ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
0: ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢੰਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ April 14 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हौसला तोड़ी बैठे दे लोग चढ़दी कला तुसी रहने हो एनर्जी लेवल तुहाडा स्ट्रोंग आ बहुत तुहानू जगाउणा नहीं पैंदा अलार्म ला ला के आप तैयार बर तैयार रहने हो ठीक है ਬਿਲੇ ਰਹਿਣ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ
0: ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ
1: ਓਕੇ
0: ਤੇ ਐਂਗਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
1: ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ
0: ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
0: ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ
1: ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਤੋਂ
0: ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ
0: ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905

IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाले को जोरे तो माँ पया जे चारे पासे तो सी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: और रोकी तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca
4: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ

0: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, see Pal de Vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, see Pal de Vecho, puri family vacation Upper jaan di sochre ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper.
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
4: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।
5: सो दोस्तों, इन्हां सत्रां नाल वतनों दूर च स्वागत है। हुणे हुणे तातला साहब तुहाडे नाल देश विदेश दीआं खबरां, जोक नोक टोक सारी जानकारी दे के हटे ने। ते हुण मैं सुखी निजर ते मेरे नाल किरण हुरी ते मनप्रीत, साडा साथ रहेगा 2 बजे तक। ते तुहाडे नाल करांगे गल्लां बातां, गीत संगीत कोई सुनना चाहुंदे हो, इह जिहड़ा हुणे गीत तुहाडे तक प्ले कीता, किद्दां दा लग्गिआ तुहानूं? मैनूं तां बड़ा वधिआ लग्गिआ। जे वधिआ लग्गिआ होवे तां तुसीं 9057990999 दे उत्ते जिहड़ी कॉल करके सानूं दस सकदे हो। अज दा सारा दा सारा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा असी ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੋਵਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋਵਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਅਤੇ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਲੀਗਮ ਡਰਾਈਵ ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਬੁਵੇੜ ਦਾ ਕਾਰਨਰ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਨਰ। ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ,
6: ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਮ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਸ ਕਰ
7: ਸਮੋਕ ਰਾਏ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607

0: लो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाले को जोरे तो माँ भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165
1: एक लाइफ है जिसे लव है
2: ये कहते मुझसे सब है
3: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल एनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब डॉट सी ए ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू। 32, 55, 80, 98। एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
6: ਸੁਗੰਧ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਵਰਗਾ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਸੱਜਰੀ ਤਰੇਲ ਵਰਗਾ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲ ਵਰਗਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਗੋਰੀ ਵਰਗਾ ਅੰਬੜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਲੋਰੀ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੌ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ

0: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमीग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सोल्यूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमीग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमीग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमीग्रेशन हुणे ही कॉल करो
2: 4164566161. जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
3: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
2: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
3: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट
2: 6473393521
3: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
2: सिल्वर हट
4: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई
5: लेनिया हो या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
6: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
7: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है जो करनगे मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच
6: भाई ते कारा दे नाल नाल बसा ते वड्डे ट्रक

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: चलो मैं देख दूँ, चेक करता पहले।

हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट